0: इस दोहे का दर्शन है पात्रता का दर्शन। कबीर कहते हैं, सतगुरु बपुड़ा क्या करें, यानी वह बेचारा सदगुरु भी क्या कर सकता है जो शीश माहे चूक, अगर शिष्य के भीतर ही दोष हो, उसके इरादे ही साफ ना हो। कबीर यहाँ एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, जूं बांस बजाई फूंक, जैसे एक खोखले बांस के भीतर आप कितनी भी फूंक मारें, वह फूंक एक तरफ से अंदर जाती हैं और दूसरी तरफ से निकल जाती हैं। बांस में वह आवाज़ संगीत तभी बनती हैं जब वह भीतर से सही तरह से तराशा गया हो। ठीक उसी तरह यदि शिष्य का मन सांसारिक वासनाओं, जिद और अहंकार से भरा हुआ है तो गुरु का ज्ञान उसके भीतर टिकेगा नहीं। वह एक कान से सुनेगा और दूसरे से निकाल देगा। गुरु कितनी भी प्रबोध यानी चेतना जगाने की कोशिश करें, शिष्य पत्थर की तरह अड़िग रहा तो कोई लाभ नहीं होगा। दर्शन यह सिखाता है कि सत्य को पाने के लिए पहले हमें अपने भीतर रिक्तता और तैयारी पैदा करनी होगी। आज के समय में हम गुरु तो बहुत बदलते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि दीपक तभी जलेगा जब दिए में तेल और बाती सही सलामत होंगे। दोस्तों, आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप वाकई ज्ञान के प्यासे हैं, या आप भी उस खोखले बांस की तरह हैं जहां बातें आती हैं और निकल जाती हैं। गुरु को खोजने से पहले अपने भीतर एक सच्चा शिष्य खोजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching।
2: बात तथागता दशा शिलाना संरक्षण बाजत तू सांग्यात टायता यावन तिनाशा गोष्टी, लोभ आज्ञान जीव हत्या राग या विचार आन खोट चावय, तू मनस या गोष्टी स्थायी ढासस पाया खुदनी सुद्दीना, त्या वय माणूसनी येरमेर शिवागो सदाचरण थई, लई येऊ आपला जिंदगीमा आर्याष्टांगिक रस्ता, दशशील जपणूक सगट माणूसनी, करो पिरीम माणूस वरे इथलं नाही ते तेनी पिरीमना जाओ मोरे, आणि करो दोस्तारगी माणूस दोस्तारगी रास आईस पैस जास्तीनी चांगली, पिरीमपेक्षा दोस्तारमा जाणीव वस भावकिनी, ती राहत नाही मर्यादा मधात माणूसपुरती, सद्गुणी माणूसले आवश्यक रास आश्रण ना गुंता, परज्ञानी बुद्धिनी एकनी आंध्यापन थई करेल पूजा बिनकामनीस, सद्गुणना रस्ता उतराले जोईजे आई परज्ञानी कसोटीले इवेकना जाणीवले। बा तथागता तुले विचार एक सावा तुना बाज दम्मना वारस कोण, तू म्हणना माणूस पुंजा बनस दम्मानी अडचण, तुम्ही दम्मना दायाद व्हा, दम्म म्हणजे नीती, दम्म म्हणजे विचार, दम्म म्हणजे शिलनी जपणूक, दम्म म्हणजे शील संपन्न जगाना उत्कर्ष, दम्माना विचार थई चालाना तू धवंडी दिनी, आणि भलता स्पष्टपणा थई तू बोलना मी तुमना मार्गदाताशी मोक्षदाता नाही, धर्मप्रचारकसनी खुदले साक्षात्कारी म्हणसन कर घोषित, मी शे जगना पालनहार करा म्हणी पुंजा आणल्या मोक्ष तुमना आत्माले, कोणी म्हणाले लागणार मीच देव मीच तुमना पालनार, कोणी म्हणेत मी स्वर्णांडोर ते कोणी म्हणेत मी स्वर्णामध्ये असती दूत, पण तू नकार ईश्वर वादले, बरमण्या कर्म को मांडले कोणताबी बिनबुडण्या खोट्या नाट्या इदा नेसले तू म्हणत घ्या असं तसं काहीच राहत नाही मोक्ष मियानी देवानं कोणा हात मजार उद्धार सगट आपलेच करणार पडस आपला उद्धार ज्ञान थई चिल जपणूक थई आचरण थई ज्ञानवंत वैशिनी हत्त दीप भव रस्तावर थई परवास करीशिनी तू म्हणत घ्या मी तुम्हाला मार्गदाता शे मोक्षदाता नाही शेवटनी शांतीना रस्ता मी दखाडसो तुमले पण मुक्तीकडे जावाना पक्का विचार आणि वाटचाल करानी रास ज्यानी त्यानी समाधान आनंद आणि निपक्षता भेटच नाही अशी को बी कोणी बी कृपा थाई अर्थ्यान गुंता आपलेच चालना पडस बुद्धिवादी शिलना रस्ता पक्का विचार थाई बात थागता तू बोलना मुक्तीना रस्ता म्हणजे परमसुख मुक्तीसारखं परमसुख नाही भेटस दुसरा कसा वरथेवी तुना बठ्ठा सिद्धांतामधार मुक्ती हौसु सिद्धांत शे गाभामधारला हाई मुक्ती म्हणजे काय तुना पहिले काही लोकेसनी मुक्तीले मोक्ष मनानी चाला खेदा खाडी मुक्ती म्हणजे मोक्ष चार प्रकारना मोक्ष मानत होतात पहिले त्यांमातला पहिला म्हणजे खा प्या मजा करा यानं स्वरूप जड दुसरा होता यौगिक तिसराले म्हणत बामनी आणि चौथा होता उपनिषिद्धिक होताच सारखा बामनी आणि उपनिषिद्धिक मुक्ती कल्पनामधार या कल्पनासनी सांग खुद खुदनं अल्लकपण आत्मानं पण तथागत तो सिद्धांतना कया निषेध आणि त्या शिकवणुकनं खंडन करीशिनी त्यांनी मांडणी कितली बिनकामनी शे तू दिन पटाडी जड कल्पना मातली मुक्ती म्हणजे इंद्रियसनं समाधान शे इंद्रियसनी शांती असा भय अध्यात्म उरस नावले त्या भय नाही होऊ शकत कल्याण माणूसनं जड रस्ता बिलकुल नाही मुक्तीना
1: आप सुन रहे हैं रेडिओ मन भावन 90.8 FM

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। ये ओवी, ये स्टांजा, ये लाइनर, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू है। सातवें एपिसोड में, सातवें भाग में हमने दुरित क्या है, तिमिर क्या है, अंधेरा, उसके बारे में चर्चा की। थोड़ा सा विश्व क्या है उसको स्पर्श भी किया। अभी आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। जब भी मैं पसायदान सुनता था या सुनता हूं कभी भी, तब मुझे हमेशा लगता है कि ये पंच लाइन है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। तीन शब्द है, विश्व, स्वधर्म और सूर्य। कौन देखेगा? एक्चुअली ये पंच लाइन का जब आजकल बहुत व्हाट्सएप पे भी पसायदान का मराठी अर्थ आता है, उसमें मैंने देखा कि सारा विश्व जो है वो स्वधर्म रूपी सूर्य से देखे, सूर्य के प्रकाश में देखे, ऐसा कुछ अनुवाद है। विश्व जो है वो स्वधर्म के सूरज जो है उसके प्रकाश में देखे। लेकिन जब मैंने ये अर्थ सुना या पढ़ा, तब मुझे लगा कि माउली को और कुछ बताना है उसमें से। इतना आसान नहीं है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। विश्व स्वधर्म के सूर्य के प्रकाश में क्या देखेगा, किसको देखेगा, और स्वधर्म का सूरज जो है उसका प्रकाश कैसे आएगा? ऐसे कुछ प्रश्न मन में उठे थे, और इसलिए मुझे लगा कि और उसमें गहराई से चिंतन होना चाहिए, और माउली को क्या अभिप्रेत है इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। शायद ये तो मेरा विचार है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो, आप उसके ऊपर चिंतन करिए और डिसाइड करिए। तो विश्व, जो माउली ने शब्द प्रयोग किया विश्व, उसके ऊपर जब मैं चिंतन करता था, तब एक्चुअली विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, जो कुछ पसायदान में माउली ने मांगा है वो सब भलाई के लिए मांगा है। तो विश्व और जगत फर्क है। जगत मीन्स अर्थ, और जगत का बहुत अच्छा मतलब भी है, जिसको गति है ऐसा जगत। अर्थ जो है वो घूमती है, जगत जो है वो अर्थ, और फिर विश्व क्या है? मुझे लगता है जगत और विश्व में फर्क है। जगत इज कन्फाइंड टू अर्थ, और ये पृथ्वी पे जो कुछ जीव जीवाणु, जो कुछ जिंदगी है, जीवन है, उससे ही लिमिटेड है, उतना ही लिमिटेशन है। लेकिन विश्व में अनलिमिटेड है। उसमें कितने तारे होंगे, कितने सोलर

और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, सोचते हैं ना। इसलिए तो आजकल नवग्रह की अंगूठी है, अलग अलग स्टोन्स है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं और हम ये मान्यता है या समझते हैं कि ये ग्रहों का परिणाम हमारी जिंदगी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रह जो है कभी इष्ट होते हैं कभी अनिष्ट होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो दूसरा उसका अर्थ ये है कि ये पृथ्वी और ये ग्रह जो है वो अलाइंड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। और जब क्यों सिंक्रोनाइज नहीं है? क्योंकि शायद वो सूरज का इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर अलग अलग आता है और इसलिए शायद जिंदगी हमारे जिंदगी के ऊपर उनका इफेक्ट होगा। तो यह अलाइनमेंट जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये शायद ज्ञानेश्वर जी को, माउली को यह अलाइनमेंट अभिप्रेत होगी। जब ये चेंज हो जाएगा, जब नया युग आएगा, नया संसार आएगा, नई सृष्टि का निर्माण होगा या सतयुग का निर्माण होगा, तब ये सब ग्रह जो है वह अलाइंड होंगे। आपको लगता है? क्योंकि इसी के ऊपर मुझे एक कथा याद आई जो रामायण की कथा है। जब रावण जब थे, रावण तो काफी पढ़े लिखे थे, ऐसे माना जाता है कि रावण दशग्रंथी ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसका गायन नहीं होता है। क्यों? गलत फैसला किया, मोह को जीत नहीं पाया। और यही रावण जो है, ये इतना बड़ा भक्त था और उसने शिवजी से कुछ वर मांगा। और फिर ऐसी कथा है कि उसने क्या किया थे कि ये नवग्रह जो है उनका उन्होंने पहिए बनाए थे, पहिए मीन स्टेप्स। और जब वो सिंहासन पे बैठ जाता था तब ये पहियों के ऊपर पैर रख के, मीन नवग्रहों के ऊपर पैर रख के वो सिंहासन पे जाके बैठ जाता था। नारद जी देख रहे थे, हैरान हो गए। नारद जी नवग्रह के साथ पास आए और उन्होंने बताया कि आप तो मनुष्य की जिंदगी के ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, आप इतने पावरफुल हो, और ये रावण आपके ऊपर पैर रख के चला जाता है, आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने कहा कि अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पीठ के ऊपर रावण पैर रखता है। अगर वो हमारे सीने के ऊपर पैर रखे तो हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी और फिर उसका पतन शुरुआत हो जाएगा। अभी नारद जी तो है ही, आपको मालूम है नारद जी काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। तो नारद जी रावण के पास आए, रावण के पास आए और उन्होंने रावण को बताया कि हे रावण महाबली, आप बहुत बलवान हो और आप बहुत तेज भी हो, आपने पूरे नवग्रह जो है उनके ऊपर पीठ के ऊपर पैर डाल के आप चढ़ते हो, लेकिन मुझे ये लगता है ये पीठ के ऊपर क्यों पैर डालना है? अगर सचमुच ही आपको अपनी ताकत दिखानी है तो एक्चुअली उनके छाती के ऊपर पैर रखना चाहिए। रावण को बात जची, उसने बोला बिल्कुल नारद जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतना महाबली हूं कि नवग्रहों की पीठ के ऊपर क्यों मैं छाती के ऊपर पैर रखूंगा। क्या हो गया? रावण ने क्या किया, जो नव ग्रह थे उनको पलटा दिया और छाती के ऊपर पैर रख के जाना जाने लगा और उनकी दृष्टि पड़ गई रावण के ऊपर और उनका पतन शुरुआत हो गया। इसलिए हम बोलते हैं दृष्टि में बहुत ताकत है। दृष्टि में जैसी ताकत है, बुरी भी है अच्छी भी है। हम बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हम धन्य हो गए, जाते हैं ना। और हमें अनुभव ही होता है कि ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी दृष्टि में बहुत मिठास है, बहुत खिंचाव है, बहुत प्यार है, बहुत सुकून।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देख कर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे, ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है, आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स it just takes over.
1: What happens then after that?
0: Then the whole day is gone.
1: Whole day is gone.
0: No, I'm saying like it happens with a lot of
1: things. Then the past becomes my present. See, hum usko kehte past hain, hum baar baar kehte wo jo beet gaya, ab jo beet gaya, lekin jitni baar usko yaad karte hain to wo past na rehkar wo ab mera वर्तमान बन जाता, क्योंकि जैसे आपने कहा जैसे ही वो पास्ट याद आया तो मेरा आज का दिन भी, सपोज वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब हम दर्द में चले गए थे, आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन अब मैं जितनी बार वो मुझे वो पास्ट याद आता, एवरी टाइम आई गो इनटू पेन, सो एक्चुअली इट्स नो मोर अबाउट द पास्ट बट नाउ इट्स इज माय प्रेजेंट। तो ये पास्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास्ट तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना, पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट रियली नथिंग टू डू विद द पास्ट, इट्स एक्चुअली बिकम माय प्रेजेंट। ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज है जहाँ हम ढूंढते वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है। सो आई लुक फॉर हैप्पीनेस ईदर इन द पास्ट और आई एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफकोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं। तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए। हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे। तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं, लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें सो यू विल सी ईदर वी आर हेयर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुराने वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं
0: आगे
1: आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में। जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहाँ से हिलकर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट। इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ। इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना। सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 10:01, एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM
0: कि वहां तब क्या हुआ था।
1: यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, 10-1, 10-2, 10-3, एक्चुअली हो क्या रहा है, हर पल हम सोच तो रहे हैं लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है, एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. So basically, at every moment, we are thinking about that which is not in my control. जो हम बहुत बार ये feeling generate.
0: अच्छा, तो वो जो plan भी बनाते हैं हम कि दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर.
1: और क्या है ही संभावना? Do you think it always goes according to your plan? लेकिन ज़्यादा important क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिएं. अगर आप इस पल में हैं, actually there is stability. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीजों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो, मन जब भी कोई
0: ऐसी, लेकिन अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, यू नो, मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी
1: डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन टू द नेक्स्ट मोमेंट.
0: यस,
1: वी ऑलरेडी एंटिसिपेट द मोर लॉसेस. इस मोमेंट में ताकत है हमारे अंदर सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ खत्म होती? जब हम अगले पल के बारे में फियर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम मेडिटेशन करते हैं, व्हाई डज इट बेनिफिट? मेडिटेशन हमें हेल्प करता है अपने माइंड की, यू नो, स्पीड को, थॉट्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल
0: किया है.
1: इफ एनीवन ट्राइज टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा? तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन की स्थिति कैसे होगी? इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. लेकिन दिस रिक्वायर्स डीप अवेयरनेस कि हम कैसे उस पल में रहें, एंड उस पल में हम हैं या नहीं हैं उसका साइन है स्टेबिलिटी. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स. जैसे ही मन डिस्टर्ब हो,
0: लुक एट,
1: चेक हो जाए किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी पास्ट की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात, और फिर मन को प्यार से अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना, पास्ट को याद
0: से हम सीखते हैं,
1: हिस्ट्री
0: रिपीट्स
1: इटसेल्फ, तो पास्ट को हमें याद रखना है. अगर पास्ट को याद रखेंगे तो उससे शिक्षा मिलती है, पास्ट को याद रखेंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे. पास्ट में धोखा खाया था, भूलना मत उसको, याद रखना ताकि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे. दीज आर आवर बिलीफ सिस्टम्स रिलेटेड टू द पास्ट. अब इन बिलीफ सिस्टम्स को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, पहली बात, जब हम पास्ट को याद कर रहे हैं, याद मतलब रिवाइज कर रहे हैं फिर से, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? लेट्स टेक द पास्ट व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट, देन वील टेक द पास्ट व्हिच इज प्लेजेंट आल्सो. अनप्लेजेंट पास्ट, एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी ने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, या एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने मुझे रिश्तों में धोखा दिया. पास्ट कुड बी समवन लेफ्ट from the family, so it could be small से लेके बहुत बड़ी बात तक. अब जब हम वो past को revise करते हैं मन से या even अपनी conversation में, क्योंकि हमारी conversations में भी बहुत बार बात जो होती वो पीछे हुई हुई बातों के बारे में होती.
0: Actually, वो हमेशा ही हमारा present बनता जा रहा है. जितना ज्यादा हम
1: absolutely. Yes. But अब क्या हो रहा है, जैसे ही I am talking to you, let's say for example मैं आपसे बात कर रही हूँ about something which has happened with me. फिर आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, उनको लगता, आपको लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन देखो उन. आई एम रिवाइजिंग दैट होल सीन ऑफ द पास्ट टू यू, एंड बोलते बोलते खंदर भी सोच रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ, और बोलते बोलते जो मेरे अंदर वो एंगर, वो हर्ट, वो जो डिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस क्रिएट होते, दिस इज अ साइन कि मैं अभी भी उनके वो बिहेवियर को उनके वो वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था. दिस इज माय बिलीफ सिस्टम, दिस कम्स आउट इन माय कन्वर्सेशन. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल टू थिंग्स विच आर नॉट इन माय कंट्रोल. वन पर्सन, मैं कितना भी बोलूं कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, दे आर नॉट इन माय कंट्रोल. सेकंड, वो सीन तो बहुत पहले पास हो चुका है, अब उसके बारे में सोचना या बोलना कि वो नहीं करना चाहिए था, हाउ फ्यूटाइल इज दैट और हाउ यूजफुल इज.
0: लेकिन सो मेनी टाइम्स वी से कि निकलने तो दो कम से कम, यू नो, इतना जो भरा हुआ है, चाहे वो गुस्सा है या एंगर है, मतलब ठीक है, अब आगे तो मुझे अपने ऊपर चेक करना है. आगे के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ना लोगों को चेंज कर सकती हूँ ना सिचुएशंस को, लेकिन पीछे के लिए जो
1: लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, जैसे हमने कहा, स्टेबिलिटी ऑलरेडी है. आप अभी एक्सपीरियंस करो, आप बिल्कुल स्टेबल हो, मन बिल्कुल शांत है. अब लो एक पास्ट के इंसिडेंट को, कोई भी, और उसको डिस्कस करना शुरू करो, तो क्या होगा?
0: वेरी ट्रू, यू नो, लाइक अगर वो बड़ा डिटैच्ड वाला हो तब भी
1: you know, कहीं बहुत हो ऐसे ऐसे. अब हमें ये याद नहीं रहता है और हम अपनी ही खुशी को, अपनी ही स्टेबिलिटी को हम खुद खत्म करते हैं. देन एट द एंड ऑफ द डे वी से व्हाई आर वी सो डिप्लीटेड. अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये चेक करें कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस करना, वर्णन करना, आई एम ओनली डिप्लीटिंग माई एनर्जी, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट बींग केयरफुल. आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शायद हमें अवेयरनेस नहीं है कि इससे मेरा कितना नुकसान होता है, हम उसको बहुत कैजुअली करते जाते. एक पास्ट इंसिडेंट हो गया, किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, अब मैं दिन में 4 लोगों को फोन करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ, वो शेयर करती हूँ, वट एम आई डूइंग, द सीन इज लॉन्ग पास्ट ओवर. लेकिन जितनी बार आई डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. What am I trying to say? और वो उनको मेरे अनुसार करना चाहिए था. Futile. अब कई बार हम कहते हैं, लेकिन इससे मुझे सीखने को मिलता है. If I keep reminding myself, तो मुझे सीखने को मिलता. तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? That also we need. सीखने को जरूर मिलता, but provided हमने उसको right perspective में लिया है. अगर मेरे साथ कोई situation हुई जिससे उस मोमेंट, चाहे वो कल था या 10 साल पहले था, आई एक्सपीरियंस्ड पेन, आई एक्सपीरियंस्ड हर्ट, बहुत कुछ हुआ, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लो. अब उससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगर आज भी मैं कहते कि मैंने उस बात को याद रखा है, उन लोगों को याद रखा है, उन लोगों ने जो एक एक चीज कही वो मैंने याद रखी है, इससे मुझे सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला? कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो मुझे उनसे ध्यान से रहना. तो ये कोई मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये मैंने किसके बारे में एक्चुअली सीखने की कोशिश की? आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट देम, दैट्स नॉट लर्निंग. एंड आई एम ओनली क्रिएटिंग, जो पास्ट में हर्ट हुआ, आई एम एक्चुअली यूजिंग इट टू स्पॉइल माय प्रेजेंट एंड माय फ्यूचर.
0: कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि वो कभी भी आके मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, यू नो, सो मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ जब मैं होती हूँ, सी अगेन देयर मे बी देयर पर्सनैलिटी और वट एवर, और माई पर्सनैलिटी बिकम्स वीकर, वट एवर.
1: सो नो नो, इट्स नॉट वट एवर, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ये प्रोसेस ले रहे हैं, वो मुझे मैन्युपुलेट कर पाते हैं, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, इससे मैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर रही हूँ, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम.
0: मुझे क्यों कर पाते हैं ये देखना,
1: दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है? मौसम बदल रहा है तो मौसम के बारे में चिंतन करना नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन क्या करनी. दैट्स व्हाई वी से राजयोगा मींस ब्रिंग द फोकस टू योरसेल्फ. वो ऐसे हैं, वो एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. अगर मैं औरों के बारे में, औरों के व्यवहार के बारे में सोचती रहूं तो मैं बच जाऊंगी उससे? Not at all. I think, you know, if I you know what I think? If I understand them well, then I will be safe. Uh-huh. No way. Unless I understand myself and I teach myself and I learn for myself कि मुझे कैसे respond करना है, क्योंकि वो तो मेरे control में नहीं है. एक ही है जो मेरे control में है. तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, it's not important. मुझे कैसे respond करना है, मुझे अपने सुरक्षा कैसे करनी है, और सुरक्षा भी क्या कि मैं हर्ट नहीं हूँ. वो ठीक से अगली बार बात करें, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगली बार मैं हर्ट नहीं हूँ, ये मेरे कंट्रोल में, अब आज मेरे लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए। एक लर्निंग हो सकती है कि ये तो ठीक से बात ही नहीं करती है, इनसे तो दूर ही, इनसे मैंने ना बहुत संभल के चलना है, दिस इज आवर वोकैबुलरी। तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगेन कि इनसे ज्यादा बात नहीं करनी है, ये कहीं भी ऐसा कुछ कह देते हैं बिकॉज ऑफ विच आई गेट हर्ट। नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स द पर्सपेक्टिव शुड बी कि कल मैं हर्ट हुई थी, आज मुझे ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मुझे हर्ट, सी ब्रिंग द फोकस टू myself. आने वाली हैं बहुत सारी बातें, आने वाली हैं, आप अगर कंट्रोल उनको करने की कोशिश करोगे यू विल जस्ट कोलैप्स। अच्छा कल आपने ठीक से नहीं बात की, आज आपने ठीक से बात कर ली, लेकिन आज कोई और ठीक से नहीं बात कर, कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे कि ये राइट तरीका है बात करने का। आई एक्सपेक्ट यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, आई हाउ मेनी पीपल कैन आई कंट्रोल द वर्ल्ड। सिचुएशन आई थी, मुझ पर डैमेज हुआ, मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उस डैमेज को, उस हर्ट को हील नहीं किया, सो आई हैवंट लर्नड एनीथिंग। वो मुझे बिटर दर्द में ही छोड़ गई। अब हम कहते कि ये मुझे याद रखना है, लाइक यू सेड हिस्ट्री रिपीट्स। अब हिस्ट्री रिपीट्स क्या होता, जितनी बार हम उस बात को याद करते, वो हुई पहले, लेकिन अब मैं जितनी बार, आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम बीती हुई बातों के बारे में सोच के अभी भी रो सकते हैं। यू नो दैट वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट, व्हाट हैपेंड, बात तो है ही नहीं, वो लोग भी नहीं है, वो सीन भी नहीं है, हाउ कम आई एम एबल टू क्राई राइट नाउ हियर, बिकॉज वो बात यहाँ क्रिएट होती, बाहर नहीं होती। तो पास्ट को हम जितनी बार क्रिएट करते हैं, हम पास्ट को अपना प्रेजेंट बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट फिर मेरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता। तो जो हम कहते कि पास्ट को अगर याद रखेंगे तो फिर वो फिर से नहीं होगा, यू नो व्हाट वी नॉर्मली से, याद रखोगे तो फिर से वो बात नहीं होगी, एक्चुअली जितना याद रखोगे
0: उतना बार बार
1: वो बार बार होता जाएगा। यू सी आई एवरी टाइम आई मीट यू आई एम सेइंग ये मुझे इंसल्ट करती है, ये मुझे तो एवरी टाइम व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। And every time I get hurt very, very easily. अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि past repeat ना हो, तो actually उसको याद नहीं रखना होगा, लेकिन past repeat ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: We'll have to repeat,
1: you will have
0: delete.
1: To forget it totally. Forgetting the past is the only guarantee कि past repeat ना होगा, क्योंकि जितनी बार वो यहाँ repeat, यहाँ हो नहीं हो we don't know, लेकिन जितनी बार भी वो यहाँ repeat होता, वो already repeat हो चुका। जैसे आपने शुरू में ही कहा, past की कोई बात याद आई और मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ, तो repeat हो गया ना, the past has repeated itself. अगर suppose मैं hurt हुई थी तभी या dejected feel किया, अब मैं जितनी बार उसको repeat करती हूँ, I again experience hurt, अगेन एक्सपीरियंस इंसल्ट, तो मेरा यहाँ का संस्कार, मेरा यहाँ का थॉट पैटर्न, वो और भी ज़्यादा कड़क, और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता गया। तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती, लेकिन थॉट पैटर्न रिपीट होता जाता, एंड देन एज विल बी माई थॉट्स, सो विल बी माई डेस्टिनी। तो जो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करूँगी, फिर मैं उन लोगों के सामने मिलूंगी, फिर उनको वो एनर्जी मैं भेजूंगी, वो एनर्जी मेरे थ्रू जाएगी, कोई एनर्जी मुझे वापस आएगी, एंड देन आई से देखा उन्होंने फिर से वो किया, उन्होंने वो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वो पास्ट को लिया, फिर से क्रिएट किया, वो एनर्जी भेजी।
0: एक्चुअली मैं वेट कर रही होती हूँ कि ये कब होगा और कब।
1: आई रीअफर्म माय बिलीफ सिस्टर।
0: और सीन के सीन पूरे वैसे के वैसे ही होते। हमारे कई बार मतलब रिलेशनशिप्स में जो फाइट होती है या ब्रदर सिस्टर्स की भी जो फाइट है, उसमें वही शब्द, सेम सिनेरियो भी वही आता है, शब्द भी वही आते हैं,
1: क्योंकि वो बहुत बार यहाँ चलता है
0: और हमें पता होता है कि इसके बाद आगे भी क्या होगा,
1: क्योंकि इतनी बार वो टेप को इतनी बार रिवाइंड कर लिया होता है कि जैसे इट्स लाइक अ मूवी। अगर आपके पास कोई मूवी की डीवीडी है और आपने वो मूवी 8-10 बार देख ली है, अब 11वीं बार चलाओ उस मूवी को,
0: कई बार तो रुक जाती है मशीन।
1: नहीं, बट यू नो इट ना, आपको हर सीन और हर डायलॉग पहले ही पता है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीन हुआ, हम उसको बार बार, हम उस सीन, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस सीन को बार बार इधर क्रिएट करते, और फिर हम यहाँ भी नहीं क्रिएट करते, हम इतने सारे लोगों के साथ उसको डिस्कस करते, तो हमने वो सीन कितनी बार क्रिएट किया। तो वी हैव द पावर कि हम उस हर्ट वाले सीन को भी बार बार क्रिएट करते, जितनी बार क्रिएट करते हम उसको अपना प्रेजेंट बनाते हैं और जो हमारा प्रेजेंट बनेगा दैट विल देन इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर. तो एक्चुअली अगर हम देखें तो पास्ट जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उसको, इवन लाइक कल आपके साथ मेरा ये हुआ, जितनी बार मैं उसको रिवाइज करती हूँ इट विल ऑलवेज बी लिटिल लिटिल डिफरेंट. कुछ कुछ कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिविजन कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो वो चेंज होता जाएगा, उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा
0: वो मेरा कलर भी तो उसमें ऐड होता जाएगा, मेरा अपना इमेजिनेशन.
1: मैं जितने लोगों के साथ बात करूंगी उस बारे में मेरी इंटेंशन मेरी भावना उसमें ऐड होती जाएगी. तो एक्चुअली हर बार जब हम रिपीट करते उसको, इट्स नॉट दैट आई एम रिपीटिंग द पास्ट, इट्स एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई रिपीट इट्स डिफरेंट फ्रॉम what actually
0: the original, yes,
1: it's different from the original. So if we look at it this way, to for past ka to koi concept hi nahi hai. Jo bita, jab usko dusri bar varnan kiya, wo exact nahi hota hai. So actually this is a new present. I'm not talking about the past.
0: Actually.
1: Let's be in the present.
0: I made it present, you know. So why should we make our present based on the past? You know, we can actually, हमारी क्रिएटिविटी यहीं पे खत्म हो जाती है. लेकिन एक शिवानी बात ये रह गई कि पास्ट को हर्ट खत्म करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, या वो हर्ट वहीं रह के छूट गया.
1: हर्ट खत्म होने के लिए अगर याद करेंगे तो वही बात हुई, जितनी बार याद करेंगे तो वो हर्ट उल्टा और क्रिएट होता. तो हम बहुत बार हमने सुना है कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो हम कहते फॉरगिव किया, फॉरगेट नहीं होता मेरे से. तो जितनी बार फॉरगेट नहीं हो रहा हम उसको रिक्रिएट करते. तो यस, इट मे साउंड डिफिकल्ट, इट इज लिटिल चैलेंजिंग, बट सॉल्यूशन इज ओनली दैट कि हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ऐसे ही पास्ट को भूलने की कोशिश करते
0: नहीं,
1: वो नहीं भूला जाता. देखो, घंटा पहले हुई बात वो भूल जाती, और 10 साल पहले हुई बात वो भूलती नहीं. कौन सी बात नहीं भूलती? जिसने यहाँ पर दर्द क्रिएट किया. तो जो हमें एफर्ट करना है वो ये नहीं कि मैं कैसे भूलूं, एफर्ट करना है कि वो जो दर्द मैंने क्रिएट किया उसको मैं हील कर दूं. दर्द हील हो जाएगा वो बात याद नहीं रहेगी. इट्स लेस टू डू विद द सिचुएशन एंड विद द पीपल, इट्स मोर टू डू विद माय पेन. जब तक वो पेन खत्म नहीं होगा, और वो पेन तब खत्म होगा जब मैं उसको अपने ऊपर लूंगी कि उन्होंने जो किया सो किया, जो बोलना था सो बोला, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना था, मेरा रिस्पॉन्स तो फिर भी मेरे हाथ में. तो अपने आप से उस तरह से बात करके, अपनी सेल्फ एस्टीम को उन पर नहीं डिपेंडेंट करके अपने हाथ में लेकर, जब हम अपने आप को हील कर लेते देन पास्ट इज फॉरगॉटन. लेकिन जब तक वो हील नहीं होगा, एंड आप सोचे आई फॉरगेट द पास्ट, आई लेट गो, आई डिलीट, इट जस्ट कम्स बैक.
0: और एक्चुअली अगर हम देखें भी, हमें वो पास्ट याद भी क्यों आता है, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कोई पेन आती है हमें एकदम से वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज थोड़ा याद आ रहा
1: है. बट देन दैट मींस इट इज ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड. सी, अगर वो फिनिश हो गया, अगर वो हर्ट हील हो गई, देन इट्स ऑफ द डिस्क, इट्स नो मोर देयर. अब आपने कहा अब जब भी पेन क्रिएट होता तब मुझे वो क्यों याद आता? क्योंकि वहां भी पेन है, यहां भी अभी पेन क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ? वो तुरंत याद आया. लेकिन जब वो पेन आपका हील हो जाएगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कोई झगड़ा हुआ फैमिली के अंदर, कोई यू नो बहुत भाई बहनों के बीच या हस्बैंड वाइफ, तो हम कहेंगे ये तो बात मुझे जीवन भर याद रहने वाली है. कई बार हम बहुत स्ट्रांगली कहते मैं जीवन भर आपको फॉरगिव नहीं करूंगा. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला
0: हूँ. मैं आपको भी फॉरगिव नहीं करूंगा,
1: मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ. सो कितनी देर रहना है और कितनी जल्दी भूलना है, ये कैपेसिटी हमारी अपनी है. आपको चाहिए आप 1 साल दर्द में रहें, आप 10 साल रहें, या आप 10 मिनट में उसको फिनिश करें, जितना हम फिर अपने ऊपर वर्क करते वो टाइम गैप कम होता जाएगा. इट्स ऑल अबाउट जितना मैं अपने अंदर वो ताकत भरती जाऊं, वो टाइम जो मुझे लगेगा अपने आप को हील करने का वो कम होता जाएगा. जितना वो कम होता जाएगा पास्ट विल बी देन फॉरगॉटन.
0: इनफैक्ट अमेजिंग है, लेकिन इसको अगेन हमें एक्सपेरिमेंट करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इतनी बार रिपीट हो चुके होते हैं कि वो लगते हैं कि वो ऐसे डिलीट कैसे होंगे. इनफैक्ट एक और बड़ा मेजर इशू है जिसको शायद हम अगली कड़ी में ज़्यादा ले पाएंगे, कि डेथ ऑफ माई वेरी नियर वन, दैट पेन, उसको तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कौन सा ऐसा थॉट है जो, क्योंकि उसमें किसी पे इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता, यू नो, कि कई बार तो मैं इस पे ये करके ये दूसरे सिचुएशन या किसी के साथ, तो उस पे भी हम बात करना चाहेंगे अपनी अगली कड़ी में. तो अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई मन में बात उठ रही है, कोई इसी से जुड़ी कोई और सजेशन भी है, या कोई और बातें हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करती हैं या उसे स्टेबल नहीं रहने देती, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज बहुत बड़ी बात हमने आज चैलेंज की है, उसको समझा है, अब उस पर काम करना बाकी है। और ऐसे में मेडिटेशन जो है वो बहुत मदद करती है। सिस्टर शिवानी, कुछ लम्हा हम चाहेंगे कि उन पर रिफ्लेक्ट कर पाए कि कैसे वर्क करना है।
1: लेट्स सिट कंफर्टेबली। बहुत कुछ पकड़ कर रखा था आज तक, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, जो आज दिन तक समझा, लोगों का दिया हुआ दर्द, ये सब कुछ मैंने पकड़ कर रखा था। और बार बार स्मृति में लाते ही मैं आज भी उस दर्द का अनुभव कर सकती। आज इस क्षण अपने आप से प्रतिज्ञा करते कि हम अब अपने आप को और दर्द नहीं देंगे। मेरे अंदर वो शक्ति है, I am that powerful being which can stay stable irrespective of whatever is happening outside। दर्द मुझे कोई और नहीं देता, दर्द तुम्हें खुद ही क्रिएट करती। जैसे ही ये स्मृति आती तो फिर फॉरगिव दूसरों को नहीं, लेकिन फॉरगिव अपने आप को, क्योंकि हमने खुद को दर्द दिया। आज अपने आप को ये याद दिलाएं कि अपने मन की स्थिति हमारे अपने हाथ में है। एंड वो सब जिन बातों को पकड़ के रखा था उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा कि उन्होंने दर्द नहीं दिया। आई कैन लेट देम गो। ट्राई एंड सी ईच वन लीविंग दैट स्पेस ऑफ माई माइंड। लेट देम गो so that I can be free and powerful। Om Shanti।
0: Om Shanti। Thank you so much। और जैसा कि हमने ये realize किया कि खुशी का जो thought है, खुशी की जो feeling है, वो भी मैं create कर रही हूँ, मैं खुद ही create कर रही हूँ, तो इसका मतलब तो दर्द भी मैं खुद ही create कर रही हूँ, तो let go करना ही पड़ेगा, मुझे खुद ही उसे delete करना है। Again ये करना मुझे है, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी शक्ति भी देता है, तो उस शक्ति को हम क्यों जाने दें, हमारे अपने हाथ में है। एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, हमारे साथ शेयर करें। आज इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM और आज के इस विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे शुभांगी। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो मन भवन स्टूडियो में। सर जी, मुझे सबसे पहले बताइए ना कि आपने मालवा की मिट्टी से अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत की हुई है और देश विदेश के श्रोताओं तक पहुँचाई भी है, तो आपने अपने पूरे संगीत सफर को पीछे मुड़कर अगर देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है और आपकी क्या प्रेरणा थी इस क्षेत्र में आने की?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका
0: जी।
1: मैं संगीत के क्षेत्र में मेरे दादाजी और पिताजी के साथ में सीखा हूँ, बहुत छोटी उम्र में, और ज्यादा तैर टिक नहीं पाए। मेरे दादाजी और पिताजी चले गए, लेकिन मुझे संगीत की गहन मेरे अंदर डाल गए
0: जी।
1: तो धीरे धीरे मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन, सामाजिक में और भी अन्य जगहों पे जाने लगा और इस संगीत की सभा को आगे आगे बढ़ाता गया
0: जी। जी, आपकी शुरुआत जो सफर रहा है वो बहुत कठिनाइयों भरा रहा है, तो इस सफर तक से लेकर आज तक का आपका सफर कैसा रहा है?
1: देखिए, कोई किसी भी काम को करने के लिए दिक्कतें आती है, लेकिन उसको सुचारू रूप से करने के लिए हमारा दायित्व बनता है और उसी काम को लेकर के हमारे जीवन में अगर उतारा तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैंने अपने जीवन में उसको उतारा और कठिन से कठिन परिस्थिति में मैंने अपने उसको छोड़ा नहीं और आज यहाँ तक हूँ मैं।
0: जी जी जी, जरूर आपके कुछ अनुभव हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसी कठिनाइयाँ थी, क्या क्या संघर्ष आपको करना पड़ा।
1: देखिए, कभी अगर उसको मैं याद करता हूँ तो मेरी भी आंख में आंसू आ जाते हैं। मैंने 14 साल तक बंधुआ मजदूर रहा एक समय में, और करते करते दिन में काम करना और रात में भजन गाना
0: जी,
1: और वो लत हमें इतनी गहरी चोट दे गई कि किसी भी कठिनाई को हम सहन करते हुए उसको हमने आज यहाँ तक, मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। तो मैं इतना आपको कोशिश हुआ कि मेरा पिताजी का, दादाजी का और ये जो संस्कृति है जिंदा रही, मैंने उसको सराहा अच्छे से।
0: वाह वाह, क्या बात है। आपकी पहचान विशेष रूप से कबीर गायन से जुड़ी है, तो आपके लिए कबीर केवल एक संत कवि है या उससे भी बढ़कर आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव रहा है?
1: देखिए मैडम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कबीर एक ऐसे संत है जिन्होंने जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ऊंच नीच, काला गोरा, इनसे सबसे ऊपर उठ करके बात कही, और उनकी बात ऐसा कोई इंसान नहीं जिनके ऊपर वो अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में मानव से मानव को जोड़ने की बात आती है। तो कबीर की बात इसलिए हमारे गहन में आ गई
0: जी, जी।
1: और हमने मानव मात्र के अंदर इसको रखने का काम किया
0: जी जी जी। कबीर की वाणी को समझते हुए उनके कई कबीर के दोहे हैं, तो उसका अर्थ लगाना और मानवीय जीवन में क्या साधन में रह सकता है?
1: नहीं, देखिए कबीर की बात कटाक्ष है
0: जी।
1: उन्होंने हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, पारसी किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी बात विभाग से रखी
0: जी।
1: उन्होंने हिंदू को कहा, मुसलमान को कहा कि कंकट पत्थर चुन के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ मुंगला बांग दे क्या बहरा हो खुदाए, और हिंदू को भी कहा कि मंदिर में तो भूत बसे, मस्जिद में सपम सफाई, दिल दरगाह में देख ले नूर खास खुदाई। तो कबीर ने हर मानव मात्र को जगाने का और समझाने का काम किया
0: जी जी जी जी। कई भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ है, तो आप किस तरह से उनके जो अनुयायी है क्या देखते हैं, आप उनको कैसे सराहते हैं?
1: नहीं देखिए, कबीर पूरे भारत में तो नहीं, पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं और अपना ज्ञान उन्होंने बताया है। तो जिस क्षेत्र में लोक शैली में या अपने अपने हिसाब से, सबने अपने अपने हिसाब से गाया है और उसी शैली में उनको ढाला है। मैं अपने माली लोक शैली में गाता हूँ प्लस हिंदी में
0: जी जी जी। आकाशवाणी का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में रहा है, तो आकाशवाणी के दौरान का आपका अनुभव कैसा था और किस हिसाब से आप बताएंगे उसका अनुभव?
1: देखिए, मैं एक मजदूर वर्ग का आदमी, आकाशवाणी पे मेरा खूब प्रसार प्रसार हुआ
0: जी जी, जी।
1: मेरे को बहुत सारा, मेरे जीवन की पहली सीढ़ी आकाशवाणी
0: जी,
1: मेरे जीवन में बढ़ने के लिए। तो मैं आकाशवाणी को, दूरदर्शन को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ।
0: अपने गांव के स्थानीय या चौबालों की योजनाओं को लेकर अगर देश के बड़े सांस्कृतिक मंच को अगर प्रस्तुति मिली है, तो गांव के श्रोताओं और बड़े शहरों में अंतरराष्ट्रीय मंचों के श्रोताओं में इसमें आपको क्या फर्क दिखाई देता है?
1: नहीं देखिए, मैं तो अपनी बात विभाग से जहाँ भी वहाँ रखता हूँ, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, चाहे चौपाल हो, चाहे गलियारा कहाँ भी हो, मैं तो उसी तरह से रखता हूँ, किसी भेदभाव नहीं रखता हूँ। उसमें जानने वाला कैसा हो वो अपने ऊपर है।
0: जी जी जी जी। आपके वर्ष 2024 में भारत सरकार का पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया था, इस सम्मान की जानकारी मिली तो उस क्षण आपको क्या मतलब कैसा महसूस हुआ और क्या लगा?
1: नहीं अच्छा तो क्या नहीं लगेगा, क्योंकि सर्वोच्च सम्मान था, मेरा पूरा परिवार खिल उठा और अपने आप को बहुत बड़ा सम्मान था, इसलिए पूरे परिवार और समाज खिलत उठा, क्योंकि हमारा देश प्रदेश वो सारे लोग का प्रेम मिला और हम खुद भी उत्साहित हुए।
0: जी जी जी। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि स्पीक मैके के इस इवेंट में जो जो विद्यार्थी जुड़े हैं वो जरूर आपके वाणी से कबीर जी का सब सुनना चाहेंगे और नया अभ्यास उनको मिलेगा और उनके जीवन में जरूर नया बदलाव भी आएगा, ये हम जरूर सोचते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को अगर वो जो डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई है या फिर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया है तो इससे प्रभावित ज्यादा है, तो उनको यहाँ तक अगर हमें लाना है तो क्या करना चाहिए जरूर?
1: नहीं, उसमें सोशल मीडिया का अहम भूमिका है, उसके माध्यम से हम जनमानस तक ज्यादा पहुँचा सकते हैं और कबीर की बात को जनमानस तक पहुंचना चाहिए
0: जी।
1: तो उसमें आपका आकाशवाणी हुआ, सोशल मीडिया हुआ, ये उनका अहम भूमिका है।
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि प्रभाव दूसरी ओर मतलब नकारात्मक के ओर यूथ का जो प्रभाव है सोशल मीडिया की ओर जा रहा है, तो उसके लिए हम कैसे उनसे अनाहत कर
1: नहीं,
0: सकते?
1: देखो अब तो किसी और मोड़ नहीं सकते, ये तो अपना अपना ज्ञान और विवेक है।
0: जी जी।
1: कबीर तो कहते हैं कि हम सुधरे तो यज्ञ सुधरेगा।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हमसे हम अपने से शुरुआत करें, हम किसी और को क्यों देखें। और आज के युवा पीढ़ी को तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि संतों की महापुरुषों की वाणी से जुड़ करके अपने जीवन को सुलभ और सरल करें, क्योंकि खान में पीन कबीर ने मृत्यु से लेकर जन्म तक सारी बातें कही है
0: जी, जी,
1: कि हम
0: जी।
1: कैसे सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकते हैं,
0: अपनी दैनंदिन शैली कैसी होनी चाहिए। अगर हम कहना चाहेंगे कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमने सुबह से लेकर शाम तक किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने दैनंदिन जीवन में?
1: सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें, सबसे बड़ा दायित्व हमारा बनता है। उससे माता पिता की उम्र वालों को माता पिता समझे, बहन को बहन की उम्र में समझे, खान पीन में पूरा ध्यान रखें, दारू बीड़ी सिगरेट गांजा भांग इत्यादि जितने भी व्यसन हैं इनसे दूर रहें और सही रहें, सही काम करें, सबसे बड़ा दायित्व यही इंसान का।
0: लेकिन आज की युवा पीढ़ी का जो है हम देखते हैं कि थोड़ी सी भी दिक्कत आए कठिनाइयां आए तो डिप्रेशन की ओर बढ़ते जाते हैं, तो उसके लिए खुद के उनके अंतर मन को अगर उनको संभालना है तो क्या क्या करना होगा उन्हें?
1: नहीं, उसको अपने पूर्वजों की तरफ अपने महापुरुषों की उधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राम हमारे देश में कई संत आए, कबीर नानक, कबीर रविदास, अंबेडकर जी, ऐसे महान पुरुष आए, इन्होंने अच्छा काम किया, तो इनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, आंख मिच करके थोड़ा सा मनन कर लें कि इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ,
0: पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ सकते हैं,
1: तो ये हमारा जीवन का मुड़ाव हो सकता है।
0: जी जी, जरूर जरूर जरूर। जाते जाते हमारे श्रोताओं को और स्पेशली जो युवा वर्ग है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: युवा वर्ग को यही है कि अपने महापुरुषों की वाणी को सुने और सुन करके अपनी खानी बानी पर ध्यान दे और सहनशीलता बने
0: जी,
1: क्योंकि आज का युग उत्तेजित जल्दी होता है, झगड़ा करता है, फसाद में फंसता है, इसलिए माफ करना सीखे, सॉरी बोलना सीखे, ये सबसे बड़ा उनके लिए उपहार होगा।
0: जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो आपके इस अनमोल ज्ञान का उपयोग जो है हमारी युवा पीढ़ी को जरूर उसको लाभदायी होगा, इस आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए।
1: रेडियो मनभान को भी मेरा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, नमस्ते, मुझे अवसर दिया और आपके माध्यम से इस जनमानस के बीच में पहुंचे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर, धन्यवाद।

0: इस दोहे का दर्शन है पात्रता का दर्शन। कबीर कहते हैं, सतगुरु बपुड़ा क्या करें, यानी वह बेचारा सदगुरु भी क्या कर सकता है जो शीश माहे चूक, अगर शिष्य के भीतर ही दोष हो, उसके इरादे ही साफ ना हो। कबीर यहाँ एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, जो बांस बजाई फूंक, जैसे एक खोखले बांस के भीतर आप कितनी भी फूंक मारें, वह फूंक एक तरफ से अंदर जाती हैं और दूसरी तरफ से निकल जाती हैं। बांस में वह आवाज़ संगीत तभी बनती हैं जब वह भीतर से सही तरह से तराशा गया हो। ठीक उसी तरह यदि शिष्य का मन सांसारिक वासनाओं, जिद और अहंकार से भरा हुआ है तो गुरु का ज्ञान उसके भीतर टिकेगा नहीं। वह एक कान से सुनेगा और दूसरे से निकाल देगा। गुरु कितनी भी प्रबोध यानी चेतना जगाने की कोशिश करें, शिष्य पत्थर की तरह अड़िग रहा तो कोई लाभ नहीं होगा। दर्शन यह सिखाता है कि सत्य को पाने के लिए पहले हमें अपने भीतर रिक्तता और तैयारी पैदा करनी होगी। आज के समय में हम गुरु तो बहुत बदलते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि दीपक तभी जलेगा जब दिए में तेल और बाती सही सलामत होंगे। दोस्तों, आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप वाकई ज्ञान के प्यासे हैं, या आप भी उस खोखले बांस की तरह हैं जहां बातें आती हैं और निकल जाती हैं। गुरु को खोजने से पहले अपने भीतर एक सच्चा शिष्य खोजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मनभावन 90.8 FM, always heart touching।
2: बात तथागता दशा शिलाना संरक्षण बाजत तू सांग्यात टायता यावन तिनाशा गोष्टी, लोभ आज्ञान जीव हत्या राग या विचार आणि खोटं चावय, तू म्हणस या गोष्टी स्थायी ढासायस पाया खुदनी सुद्धिना, त्या वय माणूसनी येरमेर शिवागो सदाचरण थाई, लय येऊ आपला जिंदगीमा आर्याष्टांगिक रस्ता, दशशील जपणूक सगट माणूसनी, करो पिरीम माणूसवरे इथलं नाही तेनी पिरीमना जाओ मोरे, आणि करो दोस्तारगी माणूसशी, दोस्तारगी रास आईस पैस जास्तीनी चांगली, पिरीमपेक्षा दोस्तारमा जाणीव वस भावकिनी, ती राहत नाही मर्यादा मधात माणूसपुरती, सद्गुणी माणूसले आवश्यक रास आश्रण ना गुंता, परज्ञानी बुद्धिनी एकनी आंध्यापन थई करेल पूजा बिनकामनीच, सद्गुणा रस्ता उतराले जोजे आई परज्ञानी कसोटीले इवेकना जाणीवले। बात तथागता तुले विचार एक सावा तुना बाज दम्मना वारस कोण, तू म्हणना माणूस पुंजा बनस दम्मानी अडचण, तुम्ही दम्मना दायाद व्हा, दम्म म्हणजे नीती, दम्म म्हणजे विचार, दम्म म्हणजे शिलनी जपणूक, दम्म म्हणजे शील संपन्न जगाना उत्कर्ष, दम्माना विचार थई चालाना तू धवंडी दिनी, आणि भलता स्पष्टपणा थई तू बोलना मी तुमना मार्गदाताशी मोक्षदाता नाही, धर्म प्रचारकसनी खुदले साक्षात्कारी म्हणसन कर घोषित, मी शे जगना पालनहार करा म्हणी पुंजा आणल्या मोक्ष तुमना आत्माले, कोणी म्हणाले लागणार मीच देव मीच तुमना पालनार, कोणी म्हणेत मी स्वर्णांडोर, ते कोणी म्हणेत मी स्वर्णामध्ये असती दूत, पण तू नकार ईश्वर वादले, बरमण्या कर्म को मांडले कोणताबी बिन बुडण्या खोट्या नाट्या इदा नेसले तू म्हणत घ्या अस तस काहीच राहत नाही मोक्ष मियानी देवान कोणा हात मजार उद्धार सगट आपलेच करणार पडस आपला उद्धार ज्ञान थई चिल जपणूक थई आचरण थई ज्ञानवंत वैशिनी हत्त दीप भव रस्तावर थई परवास करीशिनी तू म्हणत घ्या मी तुम्हाला मार्गदाता शे मोक्षदाता नाही शेवटनी शांतीना रस्ता मी दखाडसो तुमले पण मुक्तीकडे जावाना पक्का विचार आणि वाटचाल करानी रास ज्यानी त्यानी समाधान आनंद आणि निपक्षता भेटच नाही अशी कोबी कोणी बी कृपा थाई अरे त्यान गुंता आपलेच चालना पडस बुद्धिवादी शिलना रस्ता पक्का विचार थाई बात थागता तू बोलना मुक्तीना रस्ता म्हणजे परमसुख मुक्तीसारखं परमसुख नाही भेटस दुसरा कसा वरथेबी तुना बठ्ठा सिद्धांतामधार मुक्ती हौस सिद्धांत शे गाभामधारला हाई मुक्ती म्हणजे काय तुना पहिले काही लोकेसनी मुक्तीले मोक्ष मनानी चाला खेदा खाडी मुक्ती म्हणजे मोक्ष चार प्रकारना मोक्ष मानत होतात पहिले त्यांमातला पहिला म्हणजे खा प्या मजा करा यानं स्वरूप जड दुसरा होता यौगिक तिसराले म्हणत बामनी आणि चौथा होता उपनिषिद्धिक होताच सारखा बामनी आणि उपनिषिद्धिक मुक्ती कल्पनामधार या कल्पनासनी सांग खुद खुदनं अल्लकपण आत्मानं पण तथागत तो सिद्धांतना कया निषेध आणि त्या शिकवणुकनं खंडन करीशिनी त्यांनी मांडणी कितली बिनकामनी शे तू दिन पटाडी जड कल्पना मातली मुक्ती म्हणजे इंद्रियसनं समाधान शे इंद्रियसनी शांती असा भय अध्यात्म उरस नावले त्या भय नाही होऊ शकत कल्याण माणूसनं जड रस्ता बिलकुल नाही मुक्तीना
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। ये ओवी, ये स्टांजा, ये लाइनर, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू है। सातवें एपिसोड में, सातवें भाग में हमने दुरित क्या है, तिमिर क्या है, अंधेरा, उसके बारे में चर्चा की। थोड़ा सा विश्व क्या है उसको स्पर्श भी किया। अभी आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। जब भी मैं पसायदान सुनता था या सुनता हूं कभी भी, तब मुझे हमेशा लगता है कि ये पंच लाइन है, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। तीन शब्द है, विश्व, स्वधर्म और सूर्य। कौन देखेगा? एक्चुअली ये पंच लाइन का जब आजकल बहुत व्हाट्सएप पे भी पसायदान का मराठी अर्थ आता है, उसमें मैंने देखा कि सारा विश्व जो है वो स्वधर्म रूपी सूर्य से देखे, सूर्य के प्रकाश में देखे, ऐसा कुछ अनुवाद है। विश्व जो है वो स्वधर्म के सूरज जो है उसके प्रकाश में देखे। लेकिन जब मैंने ये अर्थ सुना या पढ़ा, तब मुझे लगा कि माउली को और कुछ बताना है उसमें से। इतना आसान नहीं है, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, विश्व स्वधर्म के सूर्य के प्रकाश में क्या देखेगा, किसको देखेगा, और स्वधर्म का सूरज जो है उसका प्रकाश कैसे आएगा। ऐसे कुछ प्रश्न मन में उठे थे और इसलिए मुझे लगा कि और उसमें गहराई से चिंतन होना चाहिए और माउली को क्या अभिप्रेत है इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। शायद ये तो मेरा विचार है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो, आप उसके ऊपर चिंतन करिए और डिसाइड करिए। तो विश्व, जो माउली ने शब्द प्रयोग किया विश्व, उसके ऊपर जब मैं चिंतन करता था, तब एक्चुअली विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, जो कुछ पसायदान में माउली ने मांगा है वो सब भलाई के लिए मांगा है। तो विश्व और जगत फर्क है। जगत मीन्स अर्थ, और जगत का बहुत अच्छा मतलब भी है, जिसको गति है ऐसा जगत। अर्थ जो है वो घूमती है, जगत जो है वो अर्थ, और फिर विश्व क्या है। मुझे लगता है जगत और विश्व में फर्क है। जगत इज कन्फाइंड टू अर्थ, और ये पृथ्वी पे जो कुछ जीव जीवाणु, जो कुछ जिंदगी है, जीवन है, उससे ही लिमिटेड है, उतना ही लिमिटेशन है। लेकिन विश्व में अनलिमिटेड है। उसमें कितने तारे होंगे, कितने सोलर सिस्टम्स होंगे, उसमें अफाट है, अगणित है, अनलिमिटेड है। और ये अनलिमिटेड जो है वही मांगा है माउली ने। जगत नहीं, जगत का शब्द प्रयोग नहीं किया माउली ने, शब्द प्रयोग किया है विश्व का। और ये विश्व में जो ग्रह है, और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, सोचते हैं ना। इसलिए तो आजकल नवग्रह की अंगूठी है, अलग अलग स्टोन्स है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और हम ये मान्यता है या समझते हैं कि ये ग्रहों का परिणाम हमारी जिंदगी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रह जो है कभी इष्ट होते हैं, कभी अनिष्ट होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो दूसरा उसका अर्थ ये है कि ये पृथ्वी और ये ग्रह जो है वो अलाइंड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। और जब क्यों सिंक्रोनाइज नहीं है? क्योंकि शायद वो सूरज का इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर अलग अलग आता है, और इसलिए शायद जिंदगी, हमारे जिंदगी के ऊपर उनका इफेक्ट होगा। तो ये अलाइनमेंट जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये शायद ज्ञानेश्वर जी को, माउली को
ये अलाइनमेंट अभिप्रेत होगी। जब ये चेंज हो जाएगा, जब नया युग आएगा, नया संसार आएगा, नई सृष्टि का निर्माण होगा या सतयुग का निर्माण होगा, तब ये सब ग्रह जो है वह अलाइंड होंगे। आपको लगता है? क्योंकि इसी के ऊपर मुझे एक कथा याद आई जो रामायण की कथा है। जब रावण जब थे, रावण तो काफी पढ़े लिखे थे, ऐसे माना जाता है कि रावण दशग्रंथी ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसका गायन नहीं होता है। क्यों? गलत फैसला किया, मोह को जीत नहीं पाया। और यही रावण जो है, ये इतना बड़ा भक्त था और उसने शिवजी से कुछ वर मांगा। और फिर ऐसी कथा है कि उसने क्या किया थे कि ये नवग्रह जो है उनका उन्होंने पहिए बनाए थे, पहिए मीन स्टेप्स। और जब वो सिंहासन पे बैठ जाता था तब ये पहियों के ऊपर पैर रख के, मीन्स नवग्रहों के ऊपर पैर रख के वो सिंहासन पे जाके बैठ जाता था। नारद जी देख रहे थे, हैरान हो गए। नारद जी नवग्रह के साथ पास आए और उन्होंने बताया कि आप तो मनुष्य की जिंदगी के ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, आप इतने पावरफुल हो और ये रावण आपके ऊपर पैर रख के चला जाता है, आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने कहा कि अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पीठ के ऊपर रावण पैर रखता है। अगर वो हमारे सीने के ऊपर पैर रखे तो हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी और फिर उसका पतन शुरुआत हो जाएगा। अभी नारद जी तो है ही, आपको मालूम है नारद जी काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। तो नारद जी रावण के पास आए, रावण के पास आए और उन्होंने रावण को बताया कि हे रावण महाबली, आप बहुत बलवान हो और आप बहुत तेज भी हो, आपने पूरे नवग्रह जो है उनके ऊपर पीठ के ऊपर पैर डाल के आप चढ़ते हो, लेकिन मुझे ये लगता है ये पीठ के ऊपर क्यों पैर डालना है? अगर सचमुच ही आपको अपनी ताकत दिखानी है तो एक्चुअली उनके छाती के ऊपर पैर रखना चाहिए। रावण को बात जची, उसने बोला बिल्कुल नारद जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतना महाबली हूं कि नवग्रहों की पीठ के ऊपर क्यों मैं छाती के ऊपर पैर रखूंगा। क्या हो गया? रावण ने क्या किया, जो नवग्रह थे उनको पलटा दिया और छाती के ऊपर पैर रख के जाने लगा और उनकी दृष्टि पड़ गई रावण के ऊपर और उनका पतन शुरुआत हो गया। इसलिए हम बोलते हैं

0: जाते हैं ना, और हमें अनुभव ही होता है कि ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी दृष्टि में बहुत मिठास है, बहुत खिंचाव है, बहुत प्यार है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। और कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके दृष्टि देखते ही हमें लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उनकी नज़र ठीक नहीं है, इसलिए बोलते बुरी नज़र और अच्छी नज़र। तो ये जो कहने का भाव ये था कि विश्व जो है ये नवग्रह भी है और पृथ्वी भी है और सब एक दूसरे से अलाइंड है विश्व। अब ये हमारा क्या है, स्वधर्म में सूर्य पाहो, स्वधर्म क्या है और सूर्य क्या है। धर्म को हमने गलत तरीके से पेश किया है, हम धर्म कहते हैं तो सब सबके कान खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म उसका सही मतलब क्या है, धर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम सूरज विश्व स्वधर्मे सूर्य बहो, विश्व के ऊपर थोड़ा कुछ चिंतन किया हमने, अभी अगले एपिसोड में हम स्वधर्म क्या है इसके ऊपर करेंगे और फिर सूर्य क्या है उसके ऊपर करेंगे, और तीनों को हम इकट्ठा करेंगे तो फिर माउली को क्या चाहिए, उनका विजन क्या चाहिए, क्या था, इसके ऊपर हम कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
1: अपन ट्यून केले रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: मना श्रेष्ठ धारिष्ठ जीवी धरावे, मना बोलणे नीच शोषित जावे, स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्व लोका सिरे नीव वावे। जय जय रघुवीर समर्थ। मित्रांनो सुप्रभात, राम प्रहर। आज सातवां श्लोक है, समर्थ रामदास स्वामी मनाला समजावतायत, मनाला ते काय समजावतायत, कसं समजावतायत, याच्यावर आपण यथामती यथाशक्ती चिंतन आणि मंथन करतोय। नको रे मना असं मागच्या श्लोकात सांगितलं, आता आजच्या श्लोकात समर्थ सांगतायत धारिष्ठ्य, मना श्रेष्ठ धारिष्ठ्य जीवी धरावे। श्रेष्ठ आणि धारिष्ठ्य, धारिष्ठ्य म्हटलं की आपल्याला थोडासा एक वेगळा अर्थ वाटतो। धारिष्ठ्य म्हणजे आपण म्हणतो याचं खूप धारिष्ठ्य आहे, साहस। साहस या अर्थाने इथे शब्द वापरलेला नाहीये असं मला वाटतं, साहस आहे पण धारिष्ठ्य हा संयम आहे। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धारिष्ठ्य आणि कनिष्ठ धारिष्ठ्यमध्ये काही फरक आहे। समर्थाने इथं श्रेष्ठ धारिष्ठ्य का शब्द वापरला, श्रेष्ठ धारिष्ठ्य म्हणजे संयम जो आहे तो शक्तिशाली मनुष्य जो असतो तो जेव्हा संयम करतो तेव्हा त्याच्यात ताकद असते। अशक्त शक्तिहीन माणूस संयम करतो तेव्हा तो असहाय्य असतो, आणि समर्थांना ते अभिप्रेत नाहीये, त्यांना समाज सशक्त घडवायचा आहे, पण तरीही अंगात शक्ती असून, अंगात ताकद असून, अंगात बळ असून दुसऱ्याला क्षमा करणं किंवा संयम दाखवणं याला श्रेष्ठ धारिष्ठ्य म्हणतात। आणि म्हणून समर्थ मनाला समजावतायत, मना श्रेष्ठ धारिष्ठ्य जीवी धरावे। आणि मग जेव्हा श्रेष्ठ धारिष्ठ्य जेव्हा येतं तेव्हा नंतर समर्थांनी सांगितलं, मना बोलणे नीच शोषित जावे।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देख कर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे, ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है, आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स it just takes over.
1: What happens then after that?
0: Then the whole day is gone.
1: Whole day is gone.
0: No, I'm saying like it happens with a lot of.
1: Then the past becomes my present. See, हम उसको कहते past हैं, हम बार-बार कहते वो जो बीत गया, अब जो बीत गया, लेकिन जितनी बार उसको याद करते हैं, तो वो past ना रहकर, वो अब मेरा वर्तमान बन जाता, क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे ही वो past याद आया, तो मेरा आज का दिन भी. सपोज वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब हम दर्द में चले गए थे, आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन अब मैं जितनी बार वो मुझे वो पास्ट याद आता, एवरी टाइम आई गो इनटू पेन, सो एक्चुअली इट्स नो मोर अबाउट द पास्ट बट नाउ इट्स इज माय प्रेजेंट। तो ये पास्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास्ट तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना, पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट रियली नथिंग टू डू विद द पास्ट, इट्स एक्चुअली बिकम माय प्रेजेंट। ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज है जहाँ हम ढूंढते वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है। सो आई लुक फॉर हैप्पीनेस ईदर इन द पास्ट और आई एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफकोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं। तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए। हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे। तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं, लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें, सो यू विल सी ईदर वी आर हियर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुराने वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं
0: आगे
1: आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में। जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहाँ से हिलकर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट। इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ। इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना। सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 10:01, एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM
0: कि वहां तब क्या हुआ था।
1: यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है 10:01, 10:02, 10:03, एक्चुअली हो क्या रहा है, हर पल हम सोच तो रहे हैं लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है, एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. सो बेसिकली एट एवरी मोमेंट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट विच इज नॉट इन माई कंट्रोल. जो हम बहुत बार ये फीलिंग जनरेट,
0: तो वो जो वो प्लान भी बनाते हैं हम कि दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर.
1: और क्या है ही संभावना. डू यू थिंक इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान. लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिए, अगर आप इस पल में हैं एक्चुअली देयर इज स्टेबिलिटी. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीजों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो मन जब भी कोई
0: लेकिन ऐसी अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, यू नो मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी
1: डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन टू द नेक्स्ट मोमेंट.
0: यस,
1: we already anticipate the more losses. इस moment में ताकत है हमारे अंदर situation को face करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ खत्म होती, जब हम अगले पल के बारे में fear create करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम meditation करते हैं, why does it benefit? Meditation हमें help करता है अपने mind की, you know, speed को, thoughts की speed को slow down करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल
0: किया है.
1: इफ एनीवन ट्राइज टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा. तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन की स्थिति कैसे होगी. इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. लेकिन दिस रिक्वायर्स डीप अवेयरनेस कि हम कैसे उस पल में रहें, एंड उस पल में हम हैं या नहीं हैं उसका साइन है स्टेबिलिटी. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स. जैसे ही मन डिस्टर्ब हो,
0: लुक एट,
1: चेक हो जाए किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी पास्ट की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात, और फिर मन को प्यार से अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना, पास्ट को याद
0: से हम सीखते हैं,
1: हिस्ट्री
0: रिपीट्स
1: इटसेल्फ. तो पास्ट को हमें याद रखना है. अगर पास्ट को याद रखेंगे तो उससे शिक्षा मिलती है, पास्ट को याद रखेंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे. पास्ट में धोखा खाया था, भूलना मत उसको, याद रखना ताकि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे. दीज आर आवर बिलीफ सिस्टम्स रिलेटेड टू द पास्ट. अब इन बिलीफ सिस्टम्स को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, पहली बात, जब हम पास्ट को याद कर रहे हैं, याद मतलब रिवाइज कर रहे हैं फिर से, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. लेट्स टेक द पास्ट व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट, देन वी विल टेक द पास्ट व्हिच इज प्लेजेंट आल्सो. अनप्लेजेंट पास्ट, एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी ने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, या एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने मुझे रिश्तों में धोखा दिया. पास्ट कुड बी समवन लेफ्ट from the family, so it could be small से लेके बहुत बड़ी बात तक. अब जब हम वो past को revise करते हैं मन से या even अपनी conversation में, क्योंकि हमारी conversations में भी बहुत बार बात जो होती वो पीछे हुई हुई बातों के बारे में होती.
0: Actually, वो हमेशा ही हमारा present बनता जा रहा है. जितना ज्यादा हम
1: absolutely. Yes. But अब क्या हो रहा है, जैसे ही I am talking to you, let's say for example मैं आपसे बात कर रही हूँ about something which has happened with me. फिर आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, उनको लगता, आपको लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन देखो उन. आई एम रिवाइजिंग दैट होल सीन ऑफ द पास्ट टू यू, एंड बोलते बोलते अंदर भी सोच रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ, और बोलते बोलते जो मेरे अंदर वो एंगर, वो हर्ट, वो जो डिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस क्रिएट होते, दिस इज अ साइन कि मैं अभी भी उनके वो बिहेवियर को, उनके वो वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था. दिस इज माय बिलीफ सिस्टम, दिस कम्स आउट इन माय कन्वर्सेशन. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल टू थिंग्स विच आर नॉट इन माय कंट्रोल. वन पर्सन, मैं कितना भी बोलूं कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, दे आर नॉट इन माय कंट्रोल. सेकंड, वो सीन तो बहुत पहले पास हो चुका है, अब उसके बारे में सोचना या बोलना कि वो नहीं करना चाहिए था, हाउ फ्यूटाइल इज दैट और हाउ यूजफुल इज.
0: लेकिन सो मेनी टाइम्स वी से कि निकलने तो दो कम से कम, यू नो, इतना जो भरा हुआ है, चाहे वो गुस्सा है या एंगर है, मतलब ठीक है, अब आगे तो मुझे अपने ऊपर चेक करना है. आगे के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ना लोगों को चेंज कर सकती हूँ ना सिचुएशंस को, लेकिन पीछे के लिए जो
1: लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, जैसे हमने कहा, स्टेबिलिटी ऑलरेडी है. आप अभी एक्सपीरियंस करो, आप बिल्कुल स्टेबल हो, मन बिल्कुल शांत है. अब लो एक पास्ट के इंसिडेंट को, कोई भी, और उसको डिस्कस करना शुरू करो, तो क्या होगा?
0: वेरी ट्रू, यू नो, लाइक अगर वो बड़ा डिटैच्ड वाला हो तब भी
1: you know, कहीं बहुत वो ऐसे ऐसे. अब हमें ये याद नहीं रहता है और हम अपनी ही खुशी को, अपनी ही स्टेबिलिटी को हम खुद खत्म करते हैं. देन एट द एंड ऑफ द डे वी से व्हाई आर वी सो डिप्लीटेड. अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये चेक करें कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस करना, वर्णन करना, आई एम ओनली डिप्लीटिंग माय एनर्जी, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट बीइंग केयरफुल. आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शायद हमें अवेयरनेस नहीं है कि इससे मेरा कितना नुकसान होता है, हम उसको बहुत कैजुअली करते जाते. एक पास्ट इंसिडेंट हो गया, किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, अब मैं दिन में 4 लोगों को फोन करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ, वो शेयर करती हूँ. वट एम आई डूइंग? द सीन इज लॉन्ग पास्ट ओवर. लेकिन जितनी बार आई डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? उनको मेरे अनुसार करना चाहिए था. फ्यूटाइल. अब कई बार हम कहते हैं, लेकिन इससे मुझे सीखने को मिलता है. इफ आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ, तो मुझे सीखने को मिलता. तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? दैट ऑल्सो भी नहीं, सीखने को जरूर मिलता, बट प्रोवाइडेड हमने उसको राइट पर्सपेक्टिव में लिया है. अगर मेरे साथ कोई सिचुएशन हुई जिससे उस मोमेंट, चाहे वो कल था या 10 साल पहले था, आई एक्सपीरियंस्ड पेन, आई एक्सपीरियंस्ड हर्ट, बहुत कुछ हुआ, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लो, अब उससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगर आज भी मैं कहती कि मैंने उस बात को याद रखा है, उन लोगों को याद रखा है, उन लोगों ने जो एक एक चीज कही वो मैंने याद रखी है, इससे मुझे सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला? कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो मुझे उनसे ध्यान से रहना. तो ये कोई मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये मैंने किसके बारे में एक्चुअली सीखने की कोशिश की? आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट देम, दैट्स नॉट लर्निंग. एंड आई एम ओनली क्रिएटिंग, जो पास्ट में हर्ट हुआ, आई एम एक्चुअली यूजिंग इट टू स्पॉइल माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर.
0: कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि वो कभी भी आके मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, यू नो, सो मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ जब मैं होती हूँ, सी अगेन देयर मे बी देयर पर्सनैलिटी और वट एवर, और माई पर्सनैलिटी बिकम्स वीकर, वट एवर.
1: सो नो नो, इट्स नॉट वट एवर, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ये प्रोसेस ले रहे हैं, वो मुझे मैन्युपुलेट कर पाते हैं, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, इससे मैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर रही हूँ, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम.
0: मुझे क्यों कर पाते हैं ये देखना,
1: दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है? मौसम बदल रहा है तो मौसम के बारे में चिंतन करना नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन क्या करनी. दैट्स व्हाई वी से राजयोगा मींस ब्रिंग द फोकस टू योरसेल्फ. वो ऐसे हैं, वो एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. अगर मैं औरों के बारे में, औरों के व्यवहार के बारे में सोचती रहूं तो मैं बच जाऊंगी उससे? Not at all. I think, you know, if I you know what I think? If I understand them well, then I will be safe.
0: Uh-huh.
1: No way. Unless I understand myself and I teach myself and I learn for myself कि मुझे कैसे respond करना है, क्योंकि वो तो मेरे control में नहीं है. एक ही है जो मेरे control में है. तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? It's not important. मुझे कैसे respond करना है? मुझे अपने सुरक्षा कैसे करनी है? और सुरक्षा भी क्या, कि मैं हर्ट नहीं हूँ. वो ठीक से अगली बार बात करें, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगली बार मैं हर्ट नहीं हूँ, ये मेरे कंट्रोल में, अब आज मेरे लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए। एक लर्निंग हो सकती है कि ये तो ठीक से बात ही नहीं करती है, इनसे तो दूर ही, इनसे मैंने ना बहुत संभल के चलना है, दिस इज आवर वोकैबुलरी। तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगेन कि इनसे ज्यादा बात नहीं करनी है, ये कहीं भी ऐसा कुछ कह देते हैं बिकॉज ऑफ विच आई गेट हर्ट। नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स द पर्सपेक्टिव शुड बी कि कल मैं हर्ट हुई थी, आज मुझे ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मुझे हर्ट, सी ब्रिंग द फोकस टू myself. आने वाली हैं बहुत सारी बातें, आने वाली हैं, आप अगर कंट्रोल उनको करने की कोशिश करोगे यू विल जस्ट कोलैप्स। अच्छा कल आपने ठीक से नहीं बात की, आज आपने ठीक से बात कर ली, लेकिन आज कोई और ठीक से नहीं बात कर, कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे कि ये राइट तरीका है बात करने का। आई एक्सपेक्ट यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, आई हाउ मेनी पीपल कैन आई कंट्रोल द वर्ल्ड। सिचुएशन आई थी, मुझ पर डैमेज हुआ, मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उस डैमेज को, उस हर्ट को हील नहीं किया, सो आई हैवंट लर्नड एनीथिंग। वो मुझे बिटर दर्द में ही छोड़ गई। अब हम कहते कि ये मुझे याद रखना है, लाइक यू सेड हिस्ट्री रिपीट्स। अब हिस्ट्री रिपीट्स क्या होता, जितनी बार हम उस बात को याद करते, वो हुई पहले, लेकिन अब मैं जितनी बार, आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम बीती हुई बातों के बारे में सोच के अभी भी रो सकते हैं, यू नो दैट वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट व्हाट हैपेंड, बात तो है ही नहीं, वो लोग भी नहीं है, वो सीन भी नहीं है, हाउ कम आई एम एबल टू क्राई राइट नाउ हियर, बिकॉज वो बात यहाँ क्रिएट होती, बाहर नहीं होती। तो पास्ट को हम जितनी बार क्रिएट करते हैं, हम पास्ट को अपना प्रेजेंट बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट फिर मेरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता। तो जो हम कहते कि पास्ट को अगर याद रखेंगे तो फिर वो फिर से नहीं होगा, यू नो व्हाट वी नॉर्मली से, याद रखोगे तो फिर से वो बात नहीं होगी, एक्चुअली जितना याद रखोगे
0: उतना बार बार
1: वो बार बार होता जाएगा। यू सी आई एवरी टाइम आई मीट यू आई एम सेइंग ये मुझे इंसल्ट करती है, ये मुझे इंसल्ट, तो एवरी टाइम व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। And every time I get hurt very, very easily. अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि past repeat ना हो, तो actually उसको याद नहीं रखना होगा, लेकिन past repeat ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: We'll have to repeat,
1: you will have
0: delete.
1: To forget it totally. Forgetting the past is the only guarantee कि past repeat ना होगा, क्योंकि जितनी बार वो यहाँ repeat, यहाँ हो नहीं हो we don't know, लेकिन जितनी बार भी वो यहाँ repeat होता, वो already repeat हो चुका। जैसे आपने शुरू में ही कहा, past की कोई बात याद आई और मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ, तो repeat हो गया ना, the past has repeated itself. अगर suppose मैं hurt हुई थी तभी या dejected feel किया, अब मैं जितनी बार उसको repeat करती हूँ, I again experience hurt, अगेन एक्सपीरियंस इंसल्ट, तो मेरा यहाँ का संस्कार, मेरा यहाँ का थॉट पैटर्न, वो और भी ज़्यादा कड़क, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती, लेकिन थॉट पैटर्न रिपीट होता जाता, एंड देन एज विल बी माई थॉट्स, सो विल बी माई डेस्टिनी। तो जो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करूँगी, फिर मैं उन लोगों के सामने मिलूंगी, फिर उनको वो एनर्जी मैं भेजूंगी, वो एनर्जी मेरे थ्रू जाएगी, कोई एनर्जी मुझे वापस आएगी, एंड देन आई से देखा उन्होंने फिर से वो किया, उन्होंने वो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वो पास्ट को लिया, फिर से क्रिएट किया, वो एनर्जी भेजी।
0: एक्चुअली मैं वेट कर रही होती हूँ कि ये कब होगा और कब।
1: आई रीअफर्म माय बिलीफ सिस्टर।
0: और सीन के सीन पूरे वैसे के वैसे ही होते। हमारे कई बार मतलब रिलेशनशिप्स में जो फाइट्स होती हैं, ब्रदर सिस्टर्स की भी जो फाइट है, उसमें वही शब्द, सेम सिनेरियो भी वही आता है, शब्द भी वही आते हैं,
1: क्योंकि वो बहुत बार यहाँ चलता है
0: और हमें पता होता है कि इसके बाद आगे भी क्या होगा,
1: क्योंकि इतनी बार वो टेप को इतनी बार रिवाइंड कर लिया होता है कि जैसे इट्स लाइक अ मूवी। अगर आपके पास कोई मूवी की डीवीडी है और आपने वो मूवी 8-10 बार देख ली है, अब 11वीं बार चलाओ उस मूवी को,
0: कई बार तो रुक जाती है मशीन,
1: नहीं बट यू नो इट ना, आपको हर सीन और हर डायलॉग पहले ही पता है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीन हुआ, हम उसको बार बार, हम उस सीन, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस सीन को बार बार इधर क्रिएट करते, और फिर हम यहाँ भी नहीं क्रिएट करते, हम इतने सारे लोगों के साथ उसको डिस्कस करते, तो हमने वो सीन कितनी बार क्रिएट किया। तो वी हैव द पावर कि हम उस हर्ट वाले सीन को भी बार बार क्रिएट करते, जितनी बार क्रिएट करते हम उसको अपना प्रेजेंट बनाते, और जो हमारा प्रेजेंट बनेगा दैट विल देन इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो पास्ट जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उसको, इवन लाइक कल आपके साथ मेरा ये हुआ, जितनी बार मैं उसको रिवाइज करती हूँ इट विल ऑलवेज बी लिटिल लिटिल डिफरेंट. कुछ कुछ कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिविजन कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो वो चेंज होता जाएगा, उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा.
0: तो वो मेरा कलर भी तो उसमें ऐड होता जाएगा, मेरा अपना इमेजिनेशन.
1: मैं जितने लोगों के साथ बात करूंगी उस बारे में, मेरी इंटेंशन, मेरी भावना उसमें ऐड होती जाएगी. तो एक्चुअली हर बार जब हम रिपीट करते उसको, इट्स नॉट दैट आई एम रिपीटिंग द पास्ट, इट्स एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई रिपीट इट्स डिफरेंट फ्रॉम what actually
0: the original, yes,
1: it's different yeah. from the original. So if we look at it this way, to for past ka to koi concept hi nahi hai. Jo bita, jab usko dusri baar varnan kiya, wo exact nahi hota hai. To actually this is a new present. I'm not talking about the past.
0: Actually.
1: Let's be in the present.
0: I made it present, you know. So why should we make our present based on the past? You know, we can actually, हमारी क्रिएटिविटी यहीं पे खत्म हो जाती है. लेकिन एक शिवानी बात ये रह गई कि पास्ट को हर्ट खत्म करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, या वो हर्ट वहीं रह के छूट गया.
1: हर्ट खत्म होने के लिए अगर याद करेंगे तो वही बात हुई, जितनी बार याद करेंगे तो वो हर्ट उल्टा और क्रिएट होता. तो हम बहुत बार हमने सुना है कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो हम कहते फॉरगिव किया, फॉरगेट नहीं होता मेरे से. तो जितनी बार फॉरगेट नहीं हो रहा, हम उसको रिक्रिएट करते. तो यस, इट मे साउंड डिफिकल्ट, इट इज लिटिल चैलेंजिंग, बट सॉल्यूशन इज ओनली दैट कि हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ऐसे ही पास्ट को भूलने की कोशिश करते
0: नहीं,
1: वो नहीं भूला जाता. देखो, घंटा पहले हुई बात वो भूल जाती, और 10 साल पहले हुई बात वो भूलती नहीं. कौन सी बात नहीं भूलती? जिसने यहाँ पर दर्द क्रिएट किया. तो जो हमें एफर्ट करना है वो ये नहीं कि मैं कैसे भूलूं, एफर्ट करना है कि वो जो दर्द मैंने क्रिएट किया उसको मैं हील कर दूं. दर्द हील हो जाएगा, वो बात याद नहीं रहेगी. इट्स लेस टू डू विद द सिचुएशन एंड विद द पीपल, इट्स मोर टू डू विद माय पेन. जब तक वो पेन खत्म नहीं होगा, और वो पेन तब खत्म होगा जब मैं उसको अपने ऊपर लूंगी कि उन्होंने जो किया सो किया, जो बोलना था सो बोला, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना था, मेरा रिस्पॉन्स तो फिर भी मेरे हाथ में. तो अपने आप से उस तरह से बात करके, अपनी सेल्फ एस्टीम को उन पर नहीं डिपेंडेंट करके अपने हाथ में लेकर, जब हम अपने आप को हील कर लेते देन पास्ट इज फॉरगॉटन. लेकिन जब तक वो हील नहीं होगा, एंड आप सोचे आई फॉरगेट द पास्ट, आई लेट गो, आई डिलीट, इट जस्ट कम्स बैक.
0: और एक्चुअली अगर हम देखें भी, हमें वो पास्ट याद भी क्यों आता है, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कोई पेन आती है हमें एकदम से वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज थोड़ा याद आ रहा
1: होता है. But then that means it is on the top layer of the mind. See, अगर वो फिनिश हो गया, अगर वो हर्ट हील हो गई, then it's off the disk, it's no more there. अब आपने कहा, अब जब भी पेन क्रिएट होता तब मुझे वो क्यों याद आता? क्योंकि वहां भी पेन है, यहाँ भी अभी पेन क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ? वो तुरंत याद आया. लेकिन जब वो पेन आपका हील हो जाएगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कोई झगड़ा हुआ फैमिली के अंदर, कोई यू नो बहुत भाई बहनों के बीच या हस्बैंड वाइफ, तो हम कहेंगे ये तो बात मुझे जीवन भर याद रहने वाली है. कई बार हम बहुत स्ट्रांगली कहते मैं जीवन भर आपको फॉरगिव नहीं करूंगा. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला
0: हूँ. मैं आपको भी फॉरगिव नहीं करूंगा,
1: मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ. सो कितनी देर रहना है और कितनी जल्दी भूलना है, ये कैपेसिटी हमारी अपनी है. आपको चाहिए आप 1 साल दर्द में रहें, आप 10 साल रहें, या आप 10 मिनट में उसको फिनिश करें, जितना हम फिर अपने ऊपर वर्क करते वो टाइम गैप कम होता जाएगा. इट्स ऑल अबाउट जितना मैं अपने अंदर वो ताकत भरती जाऊं, वो टाइम जो मुझे लगेगा अपने आप को हील करने का वो कम होता जाएगा. जितना वो कम होता जाएगा, पास्ट विल बी देन फॉरगॉटन.
0: इनफैक्ट अमेजिंग है, लेकिन इसको अगेन हमें एक्सपेरिमेंट करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इतनी बार रिपीट हो चुके होते हैं कि वो लगते हैं कि वो ऐसे डिलीट कैसे होंगे. इनफैक्ट एक और बड़ा मेजर इशू है जिसको शायद हम अगली कड़ी में ज़्यादा ले पाएंगे, कि डेथ ऑफ माई वेरी नियर वन, दैट पेन, उसको तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कौन सा ऐसा थॉट है जो, क्योंकि उसमें किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, यू नो, कि कई बार तो मैं इस पे ये करके ये दूसरे सिचुएशन या किसी के साथ, तो उस पे भी हम बात करना चाहेंगे अपनी अगली कड़ी में. तो अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई मन में बात उठ रही है, कोई इसी से जुड़ी कोई और सजेशन भी है, या कोई और बातें हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करती हैं या उसे स्टेबल नहीं रहने देती, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज बहुत बड़ी बात हमने आज चैलेंज की है, उसको समझा है, अब उस पर काम करना बाकी है। और ऐसे में मेडिटेशन जो है वो बहुत मदद करती है। सिस्टर शिवानी, कुछ लम्हा हम चाहेंगे कि उन पर रिफ्लेक्ट कर पाए कि कैसे वर्क करना है।
1: लेट्स सिट कंफर्टेबली। बहुत कुछ पकड़ कर रखा था आज तक, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, जो आज दिन तक समझा, लोगों का दिया हुआ दर्द, ये सब कुछ मैंने पकड़ कर रखा था। और बार बार स्मृति में लाते ही मैं आज भी उस दर्द का अनुभव कर सकती। आज इस क्षण अपने आप से प्रतिज्ञा करते कि हम अब अपने आप को और दर्द नहीं देंगे। मेरे अंदर वो शक्ति है, आई एम दैट पावरफुल बींग विच कैन स्टे स्टेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड। दर्द मुझे कोई और नहीं देता, दर्द तो मैं खुद ही क्रिएट करती। जैसे ही ये स्मृति आती तो फिर फॉरगिव दूसरों को नहीं, लेकिन फॉरगिव अपने आप को, क्योंकि हमने खुद को दर्द दिया। आज अपने आप को ये याद दिलाएं कि अपने मन की स्थिति हमारे अपने हाथ में है। एंड वो सब जिन बातों को पकड़ के रखा था उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा कि उन्होंने दर्द नहीं दिया। आई कैन लेट देम गो। ट्राई एंड सी ईच वन लीविंग दैट स्पेस ऑफ माय माइंड। लेट देम गो so that I can be free and powerful. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much. But जैसे कि हमने ये realize किया कि खुशी का जो thought है, खुशी की जो feeling है, वो भी मैं create कर रही हूँ, मैं खुद ही create कर रही हूँ, तो इसका मतलब तो दर्द भी मैं खुद ही create कर रही हूँ, तो let go करना ही पड़ेगा, मुझे खुद ही उसे delete करना है। Again, ये करना मुझे है, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी शक्ति भी देता है, तो उस शक्ति को हम क्यों जाने दें, हमारे अपने हाथ में है। एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, हमारे साथ शेयर करें। आज इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनभावन 90.8 FM और आज के इस विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे शुभांगी। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो मनभावन स्टूडियो में। सर जी, मुझे सबसे पहले बताइए ना कि आपने मालवा की मिट्टी से अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत की हुई है और देश विदेश के श्रोताओं तक पहुँचाई भी है, तो आपने अपने पूरे संगीत सफर को पीछे मुड़कर अगर देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है और आपकी क्या प्रेरणा थी इस क्षेत्र में आने की?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका
0: जी।
1: मैं संगीत के क्षेत्र में मेरे दादाजी और पिताजी के साथ में सीखा हूँ, बहुत छोटी उम्र में, और ज़्यादा तैर टिक नहीं पाए। मेरे दादाजी और पिताजी चले गए लेकिन मुझे संगीत की गहन मेरे अंदर डाल गए
0: जी।
1: तो धीरे धीरे मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन, सामाजिक में और भी अन्य जगहों पे जाने लगा और इस संगीत की सभा को आगे आगे बढ़ाता गया
0: जी। जी, आपकी शुरुआत जो सफर रहा है वो बहुत कठिनाइयों भरा रहा है, तो इस सफर तक से लेकर आज तक का आपका सफर कैसा रहा है?
1: देखिए, कोई किसी भी काम को करने के लिए दिक्कतें आती है लेकिन उसको सुचारू रूप से करने के लिए हमारा दायित्व बनता है और उसी काम को लेकर के हमारे जीवन में अगर उतारा तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैंने अपने जीवन में उसको उतारा और कठिन से कठिन परिस्थिति में मैंने अपने उसको छोड़ा नहीं और आज यहाँ तक हूँ मैं।
0: जी जी जी, जरूर आपके कुछ अनुभव हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसी कठिनाइयाँ थी, क्या क्या संघर्ष आपको करना पड़ा।
1: देखिए, कभी अगर उसको मैं याद करता हूँ तो मेरी भी आंख में आंसू आ जाते हैं। मैंने 14 साल तक बंधुआ मजदूर रहा एक समय में, और करते करते दिन में काम करना और रात में भजन गाना
0: जी,
1: और वो लत हमें इतनी गहरी चोट दे गई कि किसी भी कठिनाई को हम सहन करते हुए उसको हमने आज यहाँ तक, मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। तो मैं इतना आपको कोशिश हुआ कि मेरा पिताजी का, दादाजी का और ये जो संस्कृति है जिंदा रही, मैंने उसको सरा अच्छे से।
0: वाह वाह, क्या बात है। आपकी पहचान विशेष रूप से कबीर गायन से जुड़ी है, तो आपके लिए कबीर केवल एक संत कवि है या उससे भी बढ़कर आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव रहा है?
1: देखिए मैडम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कबीर एक ऐसे संत है जिन्होंने जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ऊंच नीच, काला गोरा, इनसे सबसे ऊपर उठ करके बात कही, और उनकी बात ऐसा कोई इंसान नहीं जिनके ऊपर वो अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में मानव से मानव को जोड़ने की बात आती है। तो कबीर की बात इसलिए हमारे गहन में आ गई
0: जी, जी।
1: और हमने मानव मात्र के अंदर इसको रखने का काम किया
0: जी जी जी। कबीर की वाणी को समझते हुए उनके कई कबीर के दोहे हैं, तो उसका अर्थ लगाना और मानवीय जीवन में क्या साधन में रह सकता है?
1: नहीं, देखिए कबीर की बात कटाक्ष है
0: जी।
1: उन्होंने हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, पारसी किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी बात विभाग से रखी
0: जी।
1: उन्होंने हिंदू को कहा, मुसलमान को कहा कि कंकड़ पत्थर चुन के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ मुंगला बांग दे क्या बहरा हो खुदाए, और हिंदू को भी कहा कि मंदिर में तो भूत बसे, मस्जिद में सपन सफाई, दिल दरगाह में देख ले नूर खास खुदाई। तो कबीर ने हर मानव मात्र को जगाने का और समझाने का काम किया
0: जी जी जी जी। कई भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ है, तो आप किस तरह से उनके जो अनुयायी है क्या देखते हैं, आप उनको कैसे सराहते हैं?
1: नहीं देखिए, कबीर पूरे भारत में तो नहीं, पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं और अपना ज्ञान उन्होंने बताया है, तो जिस क्षेत्र में लोक शैली में या अपने अपने हिसाब से, सबने अपने अपने हिसाब से गाया है और उसी शैली में उनको ढाला है। मैं अपने माली लोक शैली में गाता हूँ प्लस हिंदी में
0: जी जी जी। आकाशवाणी का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में रहा है, तो आकाशवाणी के दौरान का आपका अनुभव कैसा था और किस हिसाब से आप बताएंगे उसका अनुभव?
1: देखिए, मैं एक मजदूर वर्ग का आदमी, आकाशवाणी पे मेरा खूब प्रसार प्रसार हुआ
0: जी जी, जी।
1: मेरे को बहुत सारा, मेरे जीवन की पहली सीढ़ी आकाशवाणी
0: जी,
1: मेरे जीवन में बढ़ने के लिए। तो मैं आकाशवाणी को, दूरदर्शन को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ।
0: अपने गांव के स्थानीय या चौबालों की योजनाओं को लेकर अगर देश के बड़े सांस्कृतिक मंच को अगर प्रस्तुति मिली है, तो गांव के श्रोताओं और बड़े शहरों में अंतरराष्ट्रीय मंचों के श्रोताओं में इसमें आपको क्या फर्क दिखाई देता है?
1: नहीं देखिए, मैं तो अपनी बात विभाग से जहाँ भी वहाँ रखता हूँ,
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, चाहे चौपाल हो, चाहे गलियारा कहाँ भी हो, मैं तो उसी तरह से रखता हूँ, मैं किसी भेदभाव नहीं रखता हूँ। उसमें जानने वाला कैसा हो वो अपने ऊपर है।
0: जी जी जी जी। आपके वर्ष 2024 में भारत सरकार का पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया है, इस सम्मान की जानकारी मिली तो उस क्षण आपको क्या मतलब कैसा महसूस हुआ और क्या लगा?
1: नहीं अच्छा तो क्या नहीं लगेगा, क्योंकि सर्वोच्च सम्मान था, मेरा पूरा परिवार खिल उठा और अपने आप को बहुत बड़ा सम्मान था, इसलिए पूरे परिवार और समाज खिलेत उठा, क्योंकि हमारा देश प्रदेश वो सारे लोग का प्रेम मिला और हम खुद भी उत्साहित हुए।
0: जी जी जी। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि स्पीक मैके के इस इवेंट में जो जो विद्यार्थी जुड़े हैं वो जरूर आपके वाणी से कबीर जी का सब सुनना चाहेंगे और नया अभ्यास उनको मिलेगा और उनके जीवन में जरूर नया बदलाव भी आएगा, ये हम जरूर सोचते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को अगर वो जो डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई है या फिर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया है तो इससे प्रभावित ज्यादा है, तो उनको यहाँ तक अगर हमें लाना है तो क्या करना चाहिए जरूर?
1: नहीं, उसमें सोशल मीडिया का अहम भूमिका है, उसके माध्यम से हम जनमानस तक ज्यादा पहुँचा सकते हैं और कबीर की बात को जनमानस तक पहुंचना चाहिए
0: जी।
1: तो उसमें आपका आकाशवाणी हुआ, सोशल मीडिया हुआ, ये उनका अहम भूमिका है।
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि प्रभाव दूसरी ओर मतलब नकारात्मक के ओर यूथ का जो प्रभाव है सोशल मीडिया की ओर जा रहा है, तो उसके लिए हम कैसे उनसे अनाहत कर
1: नहीं,
0: सकते?
1: देखो अब तो किसी और मोड़ नहीं सकते, ये तो अपना अपना ज्ञान और विवेक है।
0: जी जी।
1: कबीर तो कहते हैं कि हम सुधरे तो यज्ञ सुधरेगा।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम अपने से शुरुआत करें, हम किसी और को क्यों देखें। और आज के युवा पीढ़ी को तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि संतों की महापुरुषों की वाणी से जुड़ करके अपने जीवन को सुलभ और सरल करें, क्योंकि खान में पीन कबीर ने मृत्यु से लेकर जन्म तक सारी बातें कही है
0: जी, जी,
1: कि हम
0: जी।
1: कैसे सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकते हैं,
0: अपनी दैनंदिन शैली कैसी होनी चाहिए। अगर हम कहना चाहेंगे कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमने सुबह से लेकर शाम तक किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने दैनंदिन जीवन में?
1: सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें, सबसे बड़ा दायित्व हमारा बनता है। उससे माता पिता की उम्र वालों को माता पिता समझे, बहन को बहन की उम्र में समझे, खान पीन में पूरा ध्यान रखें, दारू बीड़ी सिगरेट गांजा भांग इत्यादि जितने भी व्यसन इनसे दूर रहें और सही रहें, सही काम करें, सबसे बड़ा दायित्व यही इंसान का।
0: लेकिन आज की युवा पीढ़ी का जो है हम देखते हैं कि थोड़ी सी भी दिक्कत आए कठिनाइयां आए तो डिप्रेशन की ओर बढ़ते जाते हैं, तो उसके लिए खुद के उनके अंतर मन को अगर उनको संभालना है तो क्या क्या करना होगा उन्हें?
1: नहीं, उसको अपने पूर्वजों की तरफ अपने महापुरुषों की उधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राम हमारे देश में कई संत आए, कबीर नानक, कबीर रविदास, अंबेडकर जी, ऐसे महान पुरुष आए, इन्होंने अच्छा काम किया, तो इनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, आंख मिच करके थोड़ा सा मनन कर लें कि इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ,
0: चरित्र पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ सकते हैं,
1: तो ये हमारा जीवन का मुड़ाव हो सकता है।
0: जी जी, जरूर जरूर जरूर। जाते जाते हमारे श्रोताओं को और स्पेशली जो युवा वर्ग है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: युवा वर्ग को यही है कि अपने महापुरुषों की वाणी को सुने और सुन करके अपनी खानी बानी पर ध्यान दे और सहनशीलता बने
0: जी,
1: क्योंकि आज का युग उत्तेजित जल्दी होता है, झगड़ा करता है, फसाद में फंसता है, इसलिए माफ करना सीखे, सॉरी बोलना सीखे, ये सबसे बड़ा उनके लिए उपहार होगा।
0: जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो आपके इस अनमोल ज्ञान का उपयोग जो है हमारी युवा पीढ़ी को जरूर उसको लाभदायी होगा, इस आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए।
1: रेडियो मनभावन को भी मेरा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, नमस्ते, मुझे अवसर दिया और आपके माध्यम से इस जनमानस के बीच में पहुंचे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर, धन्यवाद।